0: story.
1: Thank you, Rob.
2: Well, that's all we've got time for on this week's Stumped on Akash Varney. Don't forget to follow us on X. We're at BBCWS Sport. Use the hashtag BBC Stumped. And check us out on YouTube as well by going to the BBC World Service on YouTube. Thanks to Sunil Gupta and Jim Maxwell and to all of you for listening. Speak to you soon. Bye-bye.
3: Stumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akash Varney.
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
5: बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है. तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे. मुझे HIV है.
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं.
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है. हम सब से मिलने से नहीं.
8: इग्नोर नहीं, याद करो.
9: HIV AIDS से संबंधित

0: Namaskar. I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to the Akashwani podcast. इस पॉडकास्ट पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास शख्सियत को लेकर आए हैं. कहते हैं ना कि हर चेहरे के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं और हर किरदार के पीछे कई सारे अनुभव होते हैं. तो आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, राइटर हैं, इंजीनियर हैं और आज हमारे गेस्ट भी हैं. इन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बहुत खूबसूरती से अपनी रियल लाइफ में यूज़ किया और अपनी कला को और गहरा और निखारा. जी, आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर निलय मिताश. नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है.
1: थैंक यू सो मच हरप्रीत जी फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन.
0: प्लेजर इज आवर्स. और मैं जरूर पूछूंगी कि किस तरीके से आपने अपनी रियल जिंदगी के अनुभवों को अपनी एक्टिंग में यूज किया, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कैमरा पर हम सब ने देखा है कि निलय मिताश कौन है, क्या करते हैं. सबको आपने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन ऑफ कैमरा निलय कौन है?
1: हरप्रीत जी, आपने तो पहला ही क्वेश्चन एक तरह से लाइफ का जवाब मांग लिया. बिकॉज ये जवाब तो मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ कई सालों से कि निलय है कौन. आई मीन निलय मिताश तो मुझे नाम दिया गया है. अगर मेरा नाम मेरे माता पिता ने कुछ और दे दिया होता तो क्या मैं कोई और होता? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ दिया है.
0: तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं.
1: हाँ बिल्कुल.
0: सो निलय कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, आपकी जर्नी कैसे रही और क्या बचपन से इंटरेस्ट था एक्टिंग में?
1: जी, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आता हूँ. और देखिए, आप छोटे शहर में ना आप ये नहीं सोचते हो कि आप एक्टर बनोगे. एक्टर वर्ड तो का यूज भी नहीं होता, हीरो बनोगे.
0: हीरो बनोगे,
1: ओके. ये आपके सोच के मच बियॉन्ड है.
0: जी.
1: कभी ये नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या हीरो बनूंगा, पर हाँ, फिल्मों से मुझे बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा. मैं हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था
0: ओके.
1: और बाथरूम में जाके एक्टिंग प्रैक्टिस करता था.
0: लवली.
1: क्योंकि मैं बाहर नहीं कर सकता था, वहाँ
0: बाहर करते तो डांट पड़ती.
1: हाँ डांट पड़ती.
0: अच्छा,
1: कर क्या रहे हो भाई, ये पढ़ाई करो जाओ. बिकॉज दैट्स व्हाट आई थिंक माय माइंड वाज ट्रेन्ड कि बचपन से पढ़ाई करो. इंजीनियर तो बनना ही है. इंजीनियर तो आपका मतलब ऑप्शन, अगर आप आईएएस नहीं बनते तब इंजीनियर बनना.
0: ओके.
1: सो दैट इज व्हाट द मेंटालिटी वाज ओवर देयर. सो पर मुझे पिक्चरों से बहुत प्यार था और मैं बचपन से ही थोड़ा ड्रामेटिक इंसान रहा हूँ.
0: तो आप बचपन से एक्टिंग करते थे दरवाजा बंद करके, लेकिन कभी स्कूल में एक्ट किया या कभी कुछ प्ले में पार्टिसिपेट किया?
1: नहीं, मैं स्कूल या प्ले में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मैं एक्टिंग रियल लाइफ में करता था.
0: रियल लाइफ में करते
1: रियल
0: थे?
1: लाइफ में
0: प्लीज हमें बताइए कैसे.
1: उधर अपने बिहार तरफ ना, उसको एक्टिंग नहीं कहते थे, नौटंकी कहते थे.
0: ओके.
1: आपने सुना होगा ना, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते थे.
0: जी.
1: मैं बहाना नहीं बनाता था, मैं बिलीव करता था कि मुझे पेट दर्द हो रहा है.
0: मतलब आप पहले बिलीव करते थे.
1: हाँ,
0: और फिर एक्ट करते थे.
1: एक्ट करने की जरूरत ही नहीं. मैं आपको एक बात बताऊं, लोग पूछते हैं एक्टिंग कैसे करते हो. एक अच्छे एक्टर को ना एक्ट नहीं करना होता है.
0: ओके.
1: दे जस्ट हैव टू लिव अ कैरेक्टर. सो विडंबना ये है कि एक अच्छे एक्टर को अगर सक्सेसफुल होना है, रियल लाइफ में एक्टिंग करना होता है और रियल लाइफ में जीना होता है.
0: तो आप उस एक्सपीरियंसेस को, उन एक्सपीरियंसेस को जीते थे
1: जीता था,
0: कि अभी मेरे पेट में दर्द हो
1: मुझे
0: रहा
1: बिलीव
0: है.
1: होने
0: आपको
1: लगता था.
0: बिलीव होने लगता था.
1: सो उसको अपेरेंटली मुझे बाद में पता चला कि उसे

0: मेथड एक्टिंग कहते हैं
1: वाओ, तो इस
0: बट
1: पर इसमें जरूर पूछेंगे आपसे कि क्या एक्टिंग सीखी जा सकती है, लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहती
0: जी
1: हूँ कि चलिए पेट दर्द का बहाना किया, स्कूल
0: हाँ
1: नहीं गए, और
0: हाँ
1: इसके अलावा कुछ ऐसा बड़ा कारनामा किया कि पेरेंट्स को पक्का यकीन हो गया कि आप शायद एक्टर बन सकते हैं।
0: हाँ देखो उन्हें यह यकीन नहीं हुआ कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, बट हाँ उन्हें ये यकीन हो गया कि
1: एक्टिंग कर
0: ये लड़का का पढ़ाई में ज्यादा स्कोप नहीं लग रहा
1: सकता
0: है। एक बार मुझे, मैं ना बहुत ही नटखट था, बहुत ही नॉटी था, तो मुझे हॉस्टल में रख दिया गया था। एंड आई वॉज लाइक, मैं छोटा बच्चा था, आई वॉज लाइक मुझे जाना ही नहीं है, हॉस्टल नहीं जाना है। एंड माई डैड वॉज लाइक जाना तो पड़ेगा। उस समय मुजफ्फरपुर से रांची बस चलती थी, वो एक अलग ही जमाना था, बस चलती थी, उसमें वीडियो कोच लगा रहता था। एंड वी यूज्ड टू वॉच, उसमें पायरेटेड मूवीज दिखाते थे। एंड मैं रास्ते भर अपने पापा को बोलते रहा कि पापा सोच लो एक बार, मुझे नहीं जाना है। कि उस लाइक मैं सोच लिया तो मैं तो जाना ही पड़ेगा, तुम बैठे हुए हो। वी रीच रांची बस स्टॉप पे, मैं एक बार आखिरी बार पूछा, पापा पक्का? उन्होंने बोला पक्का। मैं वहां जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये इंसान मुझे किडनैप करके ले जा रहा है।
1: ओह माय गॉड,
0: मतलब वहां भीड़ गैदर हो गई थी, पापा, मेरे पापा को पीटने वाले थे लोग।
1: ओह माय
0: ही
1: गुडनेस,
0: समहाउ कन्विंस देम कि मैं उनका बेटा हूं।
1: मुझे लगता है कि आई थिंक वो सबसे बड़ा रोल था आपका बचपन
0: आई
1: में।
0: कन्विंस सो मेनी पीपल कि आई वॉज बींग किडनैप्ड।
1: मासेस को आपने
0: हाँ
1: मतलब एक
0: मासेस
1: रियल
0: को
1: टाइम में कन्विंस
0: रियल,
1: कर दिया।
0: हमें बच्चा था।
1: जी
0: सो तभी मुझे पता चला कि हाँ नौटंकी तो अच्छा कर लेता हूँ।
1: नौटंकी कर लेते
0: हाँ
1: हैं, एंड देन उसके बाद जैसे आपने बताया कि हमारे इंडियन
0: जी
1: हाउसहोल्ड्स में एक कन्वेंशनल यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करें, स्टेबल जॉब करें, फिर कैसे एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, कैसे कन्विंस किया घर वालों को और खुद को सबसे पहले?
0: कुछ डिसीजन आप अपने लिए खुद लेते हो, कुछ डिसीजन बस आई डोंट नो डेस्टिनी ले लेती है। मैं कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगा, मैं तो इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग के भी बाद एमबीए करने का प्लान था,
1: अच्छा।
0: बट समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ, आई लॉस्ट माय मदर। एंड देन यू गेट अ पर्सपेक्टिव कि ठीक है, सक्सेसफुल हो के पैसे कमा के भी उसका क्या फायदा, पैसे तो जान नहीं बचा सकता ना। एंड ऑल्सो वेन यू लूज एवरीथिंग, यू नो वेन यू लूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको हारने का डर खत्म हो जाता है। तो मेरा हारने का डर खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या था, अगर जीना है तो जो मन कर रहा है तो वो करता है। तो मुझे मन किया उस समय ये भी, तब भी मैं ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं एक्सीडेंटली एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया बैंगलोर में ही, एंड दैट वॉज एन इम्प्रोव थिएटर ग्रुप।
1: मतलब अपने आप को उस दुख से उबारने के लिए कह
0: हाँ
1: सकते हैं।
0: हाँ सॉर्ट ऑफ शुरुआत में इट वॉज एन एस्केप, मैं बस कुछ करना था, देखता हूँ कुछ तो करूँ, एटलीस्ट एक्टिंग करने में मजा आता है, इसलिए ज्वाइन किया
1: एंड यू हैड अ स्टेबल जॉब साइड बाय साइड, आप
0: था।
1: काम भी कर
0: यस
1: रहे थे।
0: यस
1: और मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि बचपन से ही आपको फिल्मों से बहुत प्यार था, और आज हम बैठे भी आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, तो वो दिन भी ऐसे थे जब दूरदर्शन पर पुरानी फिल्म्स आती थी, तो कुछ ऐसा याद है कि स्क्रीन पर आपने किसी हीरो को देखा, बिकॉज हीरो यू नो वहां पर
0: हीरो
1: हीरो ही होते हैं,
0: हीरो
1: एक्टर्स
0: हीरो
1: नहीं,
0: हाँ
1: हीरो को देखा और सोचा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, या मेरा मन कर रहा है कि मैं भी करूं।
0: मुझे तो बचपन के विजुअल्स याद है, DD1 पे चंद्रकांता की कहानी। ये माना है पुरानी शक्तिमान, मैं पागल था ये सब देखने के। उस समय छोटे शहर में लाइट कट जाती थी, तो अब आई वॉज लाइक ढूंढो किस घर में जनरेटर है,
1: वाह,
0: बिकॉज
1: एपिसोड मिस नहीं होना
0: एपिसोड नहीं
1: चाहिए।
0: मिस होना चाहिए, बिकॉज उस समय ये नहीं था ना OTT की फिर कभी भी देख लो। आई
1: जी
0: वॉज लाइक ये हो ही नहीं सकता है, कहीं से भी जनरेटर ढूंढ के लाओ। एंड आई वॉज सो जिद्दी, आई वॉज लाइक माई डैड, आई वुड स्टार्ट क्राइंग, आई वुड से कि अगर अगर मैं मिस कर गया ना ये, तो फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। एंड आई यूज टू इमोशनली ब्लैकमेल माई पेरेंट्स फॉर दिस।
1: तो
0: तो
1: पढ़ाई में आप कैसे थे?
0: मैं एक्चुअली पढ़ाई में काफी अच्छा था, आई हैड अ वेरी एनालिटिकल ब्रेन, लाइक मैथ्स फिजिक्स, सो उन चीज़ों में काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट नाउ आई थिंक कि एक्टिंग में भी वो मुझे बहुत हेल्प करता है।
1: फिर जब एक्टिंग का सोचा, थिएटर ज्वाइन किया, तो कब वो मोमेंट आया जब लगा कि नहीं अब इसी रास्ते पर चलना है, जॉब

0: वो पीछे छोड़ देते हैं और नई डायरेक्शन पकड़ लेते हैं लाइफ में? कब लगा ऐसा?
1: Like I told you, after that mother's death, I was doing that. But a day happened when जब मैं सोच रहा था मैं करूं या ना करूं. एंड दैट डे व्हेन आई वाज गोइंग टू ऑफिस, मेरा एक्सीडेंट हो गया ऑटो से. एंड फॉर मी इन माय माइंड इट वाज हैपनिंग इन स्लो मोशन, धीरे धीरे धीरे ऐसा हुआ. एंड आई थॉट आई लॉस्ट माय लाइफ, बट आई डिड नॉट. बट मुझे जवाब मिला एक.

0: हम आपके इंट्रोडक्शन में एक्टर, राइटर और रिस्क टेकर भी जोड़ सकते हैं।
1: मेरी कहानी पूरी फिल्मी है,
0: जी
1: तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट आएंगे। मैं तो घंटों बात कर सकता हूँ, बहुत फिल्मी कारनामे किए हैं मैंने। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं रियल लाइफ में भी डायलॉग बोलता हूँ। नॉर्मली बात नहीं करता हूँ। माई माई पेरेंट्स एंड पीपल क्लोज टू मी दे क्रिटिसाइज।
0: तो ऑफ
1: अच्छा
0: कैमरा भी हम कह सकते हैं कि नीले एक्टिंग करते रहते हैं।
1: हाँ, ऑफ कैमरा ही मैं एक्टिंग करता हूँ,
0: अच्छा
1: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ।
0: ओके, बट आई होप यहाँ आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं अभी।
1: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ, कैमरा ऑन है।
0: ऑलराइट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने ज्वाइन किया थिएटर और इससे आगे बढ़ने की सोची, तो डेफिनेटली सबका सपना होता है कि मुंबई जाना है, माया
1: मुंबई
0: नगरी
1: जाना है।
0: बोलते हैं। अब यहाँ पर आना और स्ट्रगल करना, अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है पर बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपने डिसीजन फाइनल लिया फाइनली, तो क्या फैमिली का सपोर्ट मिल गया? उन्होंने कहा खुशी खुशी जाइए मुंबई में और अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए, ऐसा कुछ था? जा निले जी ले अपनी जिंदगी, समथिंग लाइक दैट।
1: नहीं, अमरीश पुरी जी नहीं थे
0: जी
1: मेरे डैड। सो थिंग इज, लोगों को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ, कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। एंड दे वुड हैव स्टिल सपोर्टेड मी अगर मैं अपने आप को हीरो नहीं समझता। मैं डायलॉग मार के आ गया ना, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की, मैं खुद से अचीव करके आऊंगा।
0: कदम कदम पर एक्टिंग की है आपने।
1: हाँ,
0: ऑल
1: तो
0: राइट।
1: ये जो मैंने बोल दिया ना, ये लाइन मुझे हॉन्ट किया है बहुत बार।
0: तो
1: जब
0: अभी
1: पैसे खत्म हो गए,
0: यस, अब वापस कैसे
1: क्यों
0: जाएं?
1: बोला था
0: ऑल
1: मैंने। मैं
0: राइट।
1: मांग लेता ना, क्यों बोल के आ गया मैंने।
0: सो एक रिस्क लिया, मुंबई आ
1: हाँ,
0: गए, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था? कहाँ रहेंगे, खाना पीना, पैसे भी खत्म हो जाएंगे इतनी जल्दी, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑडिशंस की लंबी लंबी लाइनें, सो कैसे प्लान किया वो सब?
1: शुरू में ये प्लान ही नहीं था। शुरू में प्लान था एक्टिंग कोर्स करूंगा, एंड आई हैड दिस थिंग, मैं जो भी कोर्स करूं या कोई भी पढ़ाई करूं, आई वॉन्ट टू बी द टॉपर। एंड आई हैड दिस थिंग कि मुझे करना ही है, एंड वहाँ भी आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स। एंड मेरे माइंड में तो मैं निकलूंगा प्रोड्यूसर्स
0: अच्छा,
1: लाइन
0: लाइन
1: में
0: लगी
1: कि
0: होगी प्रोड्यूसर्स की आराम से।
1: हाँ, आई चूज। मैं दिमाग में था कि
0: ओ
1: ठीक
0: ये
1: है यार, कॉमेडी नहीं करना है, थोड़ा सीरियस से स्टार्ट करते हैं, कॉमेडी बाद में करेंगे फॉर अ चेंज।
0: लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर देयर, यू नो, लेट मी
1: यार
0: जस्ट पिक
1: राइट
0: एंड
1: राइट
0: चूज।
1: राइट। मैं दिमाग में कैलकुलेट करता था कि ठीक है देखना, स्टीरियोटाइप मत हो जाना शुरू में ही, ठीक है एक ही टाइप के रोल मत करना। मैं अपने दिमाग में ये सब प्लानिंग कर
0: तो
1: रहा
0: अपने दिमाग में आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, क्योंकि बचपन से
1: था।
0: ऑलरेडी काफी एक्टिंग कर ही ली थी आपने।
1: हाँ, मैं निकल के भी था, प्रोड्यूसर्स नहीं पहचाने थे,
0: बिल्कुल
1: उनकी गलती
0: बिल्कुल।
1: थी।
0: सो एक्टिंग जब आपने
1: हाँ
0: सीखी, सो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर एक्ट करते वक्त पहली बार ना सुनने को मिला होगा, ये अच्छा नहीं किया, तो वो जो टॉपर माइंडसेट है उसको कहीं धक्का लगा, अरे मैं तो हमेशा सबसे आगे, अभी क्या हो गया?
1: देखिए, ना सुनना ये बात पे कि ये अच्छा नहीं किया, उससे पहले मुंबई ने बहुत ना सुना दिया।
0: जैसे
1: आप लाइन में खड़े रहते थे वहाँ ऑडिशन के लिए, एंड द वे एक न्यू कमर को, एक्टर को वहाँ ट्रीट किया जाता है, फिट फिट फिट नॉट फिट, हट एक जगह ऐसे बोला, हटो क्या कर क्या रहे हो, बोला ना नॉट फिट हटो। मैं तो शॉक में था शुरू में, ये क्या ऐसे क्यों बात कर रहे हो भाई, और अगर मैं बन गया तो।
0: तो ऐसे जब ना सुनने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट होती है,
1: जी
0: क्योंकि आप एक अनजान शहर में हैं, फैमिली भी साथ में नहीं है कि घर चले जाएं तो थोड़ा वो पैम्पर कर दें,
1: जी
0: ऐसे वक्त में कैसे खुद को संभालते हैं? स्पेशली एज एन आउटसाइडर, आप एक छोटे शहर से आए हैं, बहुत सारे सपने हैं आपके, बट द वर्ल्ड इज नॉट वेरी काइंड टू यू।
1: मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन, और मैं मानता भी हूं कि एक एक्टर को अच्छा एक्टर बने रहने के लिए ना वल्नरेबल होना बहुत जरूरी है, तो वो मैं छोड़ नहीं सकता था। और मैं इमोशनली वल्नरेबल हूं, मैं तो इनफैक्ट बहुत बार रोता हूं।
0: तो इस माया नगरी में जहां पर कई प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इमोशनल होना एक वीकनेस नहीं माना जाता?
1: माना जाता, लोग मानते हैं कि इमोशनल होना वीकनेस है। इनफैक्ट मैं जहाँ से आया हूँ, मैं छोटे जगह से आया हूँ, वहाँ तो रोना बाई अ मर्द इज नॉट कंसिडर्ड गुड।
0: पर
1: मर्द मर्द होके रो रहे हो भाई,
0: आप रोते हैं।
1: मैं तो

0: सिनेमा देख के रो देता हूँ। मुझे लगता है अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोना। आई मीन आई थिंक दैट इज ब्रेव। एंड वाई टू टर्म इट कि मर्द होके, उसमें तो बहुत सारे कंसेप्चुअली गड़बड़ है कि ओके मर्द आर सपोज टू बी ब्रेव। नो आई डोंट थिंक सो। आई मीन इवन अगर आप बायोलॉजिकली हिस्टोरिकली भी देखिएगा, आई फाइंड वुमेन आर ब्रेवर देन मैन। दे हैव ऑलवेज बीन। देयर इज अ रीजन गॉड, प्रकृति, साइंस, किसी ने, आई मीन दे हैव गिवन वुमेन द राइट टू गिव बर्थ।
1: सो वुमेन एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी ब्यूटिफुली, यू नो,
0: या
1: अपने दोस्तों से बातें कर ली,
0: या
1: रो लिया, खुद को कहीं ना कहीं वे एक्सप्रेस करती हैं। आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो जब डाउन फील करते हो, लो फील करते हो? व्हाट्स योर कोपिंग मैकेनिज्म?
0: एंड आई जस्ट गो क्वाइट। आई मे बी आई क्राई समटाइम्स एंड आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट समटाइम्स।
1: लिखते
0: आई
1: लिखते भी
0: हाँ
1: हैं?
0: कभी कभी लिखने लगता हूँ। इनफैक्ट एक बार बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट हुआ था। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, बाहर की तरफ देख रहा था। आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस। एंड मैंने कुछ लिखा था, इफ यू
1: प्लीज
0: परमिट मैं
1: प्लीज
0: सुनाना चाहूंगा।
1: जी।
0: एंड उस समय मेरा बहुत डाउन चल रहा था। आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है। हाउ डू आई फाइट।
1: मुंबई में थे आप?
0: मुंबई में, हाँ। तब मैंने लिखा था, आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे। अधूरे से जो ख्वाब रह गए थे उसे पूरा यही कराएंगे। दर्द जो लिया है उधार में, अब उसका कर्ज उतारना है। मुस्कुराहटों के पीछे जो छुपा रखे हो, अब उस समुंदर में डूब जाना है। तेज लहरें आएंगी, मझधार में तुम फंस भी जाओगे, लेकिन उसका सामना ही ना किया तो कभी तैरना ना सीख पाओगे। दुनिया की बातों पे जो एतबार करने लगे हो, शायद खुद से ही थोड़ा कम प्यार करने लगे हो। कभी आंखें मूंद करके देख लो, शायद वो अनदेखा सच देख पाओगे। अंधेरे में जो देखना सीख लिया, शायद मन के उस शांत पुकार को भी सुन पाओगे। आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे।
1: दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत डीप है। मुझे लगता है कि शायद मैं पोइट वर्ड मिस कर गई आपके इंट्रोडक्शन में। आप बहुत अच्छा लिखते हैं,
0: क्यों
1: और आई थिंक मैं अब मेकआउट कर सकती हूँ कि कैसे आप उन लो मोमेंट्स से खुद को उबारते हैं, बाहर लेकर आते हैं। आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, आपने बताया,
0: जी?
1: लेकिन ये जो आपके इमोशंस हैं, आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको एक्टिंग में हेल्प करते हैं? आपने कहा आपने एक्टिंग सीखी है,
0: जी
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है? सीखकर आप अच्छे एक्टर बन जाते हैं, या ऐसे ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, जिंदगी के अनुभवों को अपने आगे रख के आप अच्छे एक्टर बनते हैं? क्या है ये अच्छा एक्टर बनने का फॉर्मूला?
0: देखिए, अच्छा एक्टर बनना या किसी भी फील्ड में एक्टिंग, किसी भी फील्ड में अच्छा करना, बेसिकली आप बात करना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में नॉलेजेबल इनफ होना,
1: जी
0: तो उसके लिए आपको कुछ सीखना तो पड़ेगा। बट उस सीख को कैसे आप परसीव करते हो। जैसे अगर एक्टिंग में देखें, बहुत सारे थ्योरीज है, माइजनर,
1: जी
0: मेथड एक्टिंग, स्टीफन बुक, मैंने सब पढ़ा, सब पढ़ा। बट अगर मैं उसको एब्सोल्यूट ले लूं कि दैट इज नॉलेज, तो मैं वहीं पे फंस गया। दैट इज अ परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन,
1: राइट
0: उनका एक्टिंग का परसेप्शन है। मैं पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो उनका सोच किधर जा रहा है।
1: राइट
0: अगर वो इन्फॉर्मेशन लेके मैं अपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ के साथ कंबाइन करूंगा ना, तब शायद नॉलेज की तरफ बढ़ पाऊंगा। पर अगर उसको मैं फिक्स कर लिया, डिफाइन कर लिया कि यही सच है, तो मैं वहीं पे बंध गया। तो एक्टर तो छोड़ो, आप एक्टिंग तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि एक्टिंग करते करते कुछ ऐसा मोमेंट आया जहां पर आपको लगा कि अभी इससे बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं ज्यादा इमोशनल हो गया, आप कुछ ज्यादा ही आप उसमें इन्वॉल्व हो गए कि कहीं ना कहीं आप उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने लगे?
0: अभी हमारी जो सीरीज है हेलो हम बोल रहे हैं,
1: जी, इस पर हम बहुत विस्तार से भी चर्चा करेंगे। जी बताइए।
0: पर उसमें सुष्मिता मुखर्जी जी, शी प्लेड माई मदर,

0: एंड एक बहुत ही इमोशनल सीन है बिटवीन पप्पू एंड
1: पप्पू योर कैरेक्टर
0: या वो उनका एक बहुत ही इमोशनल सीन है सुष्मिता जी के साथ
1: जी.
0: एंड इट एंड्स विद है ना बहुत ही प्यारा सा हग. माँ उसको ऐसे करती है एंड पप्पू उसके गोद में है एंड आई वाज एक्टिंग एंड सडनली व्हेन दैट हग हैपेंड ना आई रिमेम्बर्ड अ फीलिंग जो शायद बहुत सालों से नहीं किया था
1: आप मिस कर रहे थे.
0: या मिस क्या वो महसूस जो है ना वो एहसास समो में भूल रहा था एंड अचानक से वो एहसास जो फील हुआ ना आई रिमेम्बर ओ ओके आई यूज्ड टू हैव दैट सो दैट वाज समथिंग यू नो अच्छा भी लगा हैवी भी लगा एंड देन कट.
1: तो कट के बाद उस जोन से बाहर आने में टाइम कितना लगा?
0: सी दिस पर्टिकुलर इमोशन आई हैव ट्रेन माई माइंड नाउ आई नो इट हैज मतलब शुरुआत में ऐसे जब भी हुआ तो मैंने अपने अपने तरीके बनाए निकालने के बट बहुत सारे इमोशंस है बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो मुझे इफेक्ट किए हुए.
1: ओके.
0: आई मीन
1: जैसे
0: वयम वयम मूवी अगर
1: या वयम पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पहला प्रोफेशनल जो असाइनमेंट था आपका एक्टिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. कैसे मिला, कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, फाइनली आपने एक्टिंग सीख ली और
0: हाँ
1: कुछ अपने इमोशंस से उसको निखार भी लिया, तो वो
0: हाँ
1: पहला असाइनमेंट क्या था?
0: ओके. मैं जब बैरी जॉन से निकला तो मुझे तुरंत एक असाइनमेंट भी मिल गया था एंड मुझे लगा हो गया यही तो मैं बोल रहा था तुम
1: यही तो
0: लोग को
1: चाहिए था.
0: चाहिए था दूर की बात है मैंने तो
1: ओ
0: बोल दिया था तुम ही नहीं सुन रहे थे मिल गया देखो
1: ओके.
0: अब आगे देखना वो सुपर फ्लॉप हो गई शायद किसी ने नहीं देखा
1: ओके. तो किसी ने नहीं
0: सो
1: देखा.
0: मैं उसको एक्टिंग डेब्यू ही नहीं
1: अच्छा ठीक है, तो
0: माना
1: आप बताना चाहेंगे वो क्या था कि ढक के रखना चाहेंगे उसको राज की
0: जब किसी ने
1: तरह?
0: देखा ही नहीं तो मैं तो
1: शायद
0: डेब्यू
1: आप
0: अभी
1: देख लें.
0: डेब्यू अभी कर रहा हूं
1: ओके. सो फिर यानी बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं, यू नो, और
0: या
1: एक्टिंग जॉब्स आते हैं जो एक एक्टर करता है, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है. व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू फाइनली रियलाइज दैट नाउ आई हैव अराइव्ड? वाज इट वयम?
0: आई स्टिल डोंट थिंक आई हैव अराइव्ड बट एटलीस्ट वयम गेव मी समथिंग जो इंडस्ट्री के अंदर जब जो भी लोग देख रहे हैं क्योंकि 14 साल में आपका नेटवर्क बन जाता है यू स्टार्ट यू नो हैंगिंग आउट विद पीपल फिर वो देखे फिर वो दूसरों को देखे दिखाए एक इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क बनता है तो उनके अंदर ये बिलीव हुआ कि अच्छा ये ऐसे ही नहीं है ये तो अच्छा एक्टर है राइट उससे पहले इट वॉज लाइक कि हाँ अच्छा है हर जगह टॉप किया है ये किया है बट वयम ने उन्हें कुछ और एक प्रूफ दे दिया
1: वयम आपकी जो सीरीज है उसमें आपने 10 डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं, एंड जब मैंने वो देखी तो मुझे मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल संजीव कुमार जी की मूवी नया दिन नई रात. कहीं ना कहीं मैं उसे रिलेट कर पा रही थी. उसमें उनके 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, वहां पर भी नवरस की बात होती है, बट वयम समवेयर इज अ बिट डार्क. सो कैसा था वो एक्सपीरियंस? और क्योंकि अभी आप इतने ज्यादा अनुभवी नहीं हुए हैं इस फील्ड में, और वयम जैसा आपको एक उस मूवी में एक किरदार निभाने को आपको मिला, इतने डिफरेंट शेड्स हैं, ग्रे शेड्स भी हैं, कभी ऐसा हुआ कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या अभी आई नीड मोर ट्रेनिंग, आई नीड मोर एक्सपर्टीज, कुछ ऐसा मोमेंट आया?
0: नहीं ये कभी नहीं आया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दैट आई न्यू व्हेन वयम वाज रिटन आई न्यू आई टोल्ड अभियांक जो डायरेक्टर है उनको आई टोल्ड हिम कि मैं अवार्ड लेके आने वाला हूँ इसमें आई टोल्ड हिम दैट टाइम ओनली बनाने से पहले कि मैं इसमें अवार्ड लेके आऊंगा हूँ वो भी बोले कि हाँ पता है वो तो आप लेके आओगे एंड आई वॉन्ट 3 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मैं 3 चीज हूँ एन ऑडियंस अ राइटर एंड एन एक्टर एज एन ऑडियंस आई लव रोमांटिक कॉमेडी आई लाइक रोमांटिक कॉमेडी इवन गोविंदा वाली कॉमेडीज आई वॉच दोज कंटेंट्स एज अ स्क्रिप्ट राइटर आई हैव अ विजन मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैंने अपने स्क्रिप्ट लिखे हैं और वो है चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को एज एन एक्टर मैं जज नहीं कर सकता हूँ कैरेक्टर को
1: हम सबके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी लाइफ में. जब बहुत इट इट गेट्स टू मच, तो फिर कोई वेकेशन पर चला जाता है, कोई रिलैक्स करता है, सो जाता है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो थेरेपी की तरह होता है.
0: या लेटली आई मीन आई गो ट्रैवलिंग इनफैक्ट तमाशा मूवी आपने देखा है उसमें हाय आई एम वेद आई डू दैट

0: वाओ दैट्स नाइस.
1: दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड, दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड आई नो, बट ठीक है, क्योंकि अब मैंने वो डायलॉग खत्म कर दिया ना कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा. वो डायलॉग दैट डजंट स्टैंड एनी
0: तभी
1: मोर,
0: वापस
1: अब
0: जाने
1: मैं ले
0: का.
1: सकता हूँ
0: अच्छा,
1: आपसे.
0: यानी वापस जाने का स्कोप है, ले सकते हैं जाके,
1: हाँ हाँ अब ले
0: स्कोप अब
1: सकता
0: ले
1: हूँ.
0: सकते
1: तो
0: हैं.
1: अब क्या है कि जरा मैं घूम के आता हूँ, पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ, कार्ड दे देना बस.
0: तो घूमते घूमते आप निकल गए ओटीटी पीबी वेव्स की तरफ और किया हेलो हम बोल रहे हैं. तो
1: हेलो.
0: हेलो हम बोल रहे हैं कि जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं
1: तो
0: बताएं.
1: पप्पू प्रसाद पांडे एकदम ही केयरफुली लड़का है, जैसे गांव के लड़के होते हैं. तो एक ऐसा इंसान, एक दिन उसके दोस्तों ने उन्हें बोला कि भाई तेरे पास लड़की क्यों नहीं है. एंड उस चैलेंज में एक दोस्त ने मास्टर प्लान निकाला कि मैं 100 लड़कियों के नंबर ला रहा हूं,
0: अच्छा.
1: एक ना एक तो कोई लड़की तुमको प्यार हो ही जाएगा, एक ना एक भाभी होगी.
0: अच्छा.
1: एंड उसी बकवास में ना ही एक्सीडेंटली कॉल्स अ गर्ल हु इज द हीरोइन ऑफ द शो, पाखी धारी, प्रतिभा तिवारी.
0: जी.
1: एंड देन एवरीथिंग टेक्स अ पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटिकल
0: पॉलिटिकल एंगल, आई थॉट इट्स
1: एंगल.
0: कॉमेडी.
1: इट, अगर आप ट्रेलर देखें ना,
0: जी.
1: उसमें हमने डिफाइन ही नहीं किया ये है क्या, क्या ये कॉमेडी है, क्या ये फैमिली ड्रामा है, क्या ये पॉलिटिकल एंगल
0: अब तो
1: है,
0: मुझे सस्पेंस भी नजर आ रहा है इसमें.
1: क्या ये सस्पेंस है. ये हमारी जो जिंदगी है, आपकी ही
0: जी.
1: जिंदगी, अगर मैं आपकी जिंदगी को जॉनर दे दूंगा, ठीक है, आपकी जिंदगी रोमांटिक है, आपकी जिंदगी पॉलिटिकल, कैसा लगेगा आपको.
0: जी.
1: वैसे ही ये पप्पू प्रसाद पांडे, पाखीधारी, पवन, सिंदूरी पान सिन्हा जो यशपाल जी प्ले कर रहे हैं, मेरी माँ सुष्मिता मुखर्जी,
0: जी
1: ये इन सब की कहानी है.
0: जी
1: कोई भी कहानी को जॉनर क्यों देते हो, कहानियां तो बस कहानियां होती है, उसमें हर जॉनर आते हैं. हमारी जिंदगी में दिन भर में 10 जॉनर आते हैं. तो वैसे ही हेलो
0: जी.
1: हम बोल रहे हैं, जॉनरलेस है, बस कहानी है.
0: और ये कहानी बहुत रिलेटेबल भी है, गांव
1: जी
0: देहात की कहानी. यहाँ पर इमोशंस हैं, आपस में बॉन्डिंग नजर आ रही है फ्रेंड्स की.
1: जी
0: आपने एक मदर और सन के रिलेशनशिप की बात करी और फिर वो जमाना जब कॉल कर कर आप
1: आए
0: यू नो मिस कॉल में हम सोचते थे मिस
1: मजा
0: कॉल देंगे,
1: आता
0: ब्लैंक कॉल करेंगे और
1: था.
0: आवाज सुनेंगे.
1: हाँ
0: तो ये जो है, हम जब आज बात करते हैं
1: हाँ
0: इंक्लूजन की, हर कोई वो कंटेंट देखना चाहता है जो रिलेटेबल हो. एक यूथ
1: राइट
0: को उसके
1: राइट
0: जैसा कंटेंट चाहिए, एंटरटेनिंग या एडवेंचरस.
1: राइट
0: और जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनको उनके जैसा कंटेंट चाहिए, गांव देहात के लोगों को भी अपनी भाषा अपने जैसा कंटेंट चाहिए. सो इसमें किस तरीके से वो एक एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, उस चीज को कैसे जिया आपने, कितने अपने पर्सनल एलिमेंट्स आपने पप्पू प्रसाद पांडे जी में डाले.
1: काश काश पप्पू प्रसाद पांडे जो काम करते हैं वो मैं कर पाता. वो
0: जी.
1: मैं बस माइंड में करता था बचपन में. ओके, साइकिल पे आगे लड़की को बैठा के घुमाना वो सब नहीं कर
0: अब रोड्स
1: पाता
0: रोड्स पे ही करना
1: था.
0: भी मुश्किल हो गया
1: हाँ, बट
0: एक्चुअली.
1: दिमाग में तो करते, कितने बार किए
0: हाँ,
1: होंगे बचपन में, पर वो
0: इमेजिनेशन.
1: होता नहीं था.
0: जी.
1: तो जैसे हमारे सेट पे भी हुआ था ये बात कि साइकिल पे आगे चलाना था, और मुझे साइकिल चलाना उतना अच्छे से आता
0: मैं
1: नहीं
0: पूछने
1: था.
0: वाली थी, साइकिल चलानी आती है आपको?
1: बचपन में मैंने चलाया था,
0: अच्छा
1: पर किसी लड़की को तो आगे नहीं बैठाया था.
0: अच्छा उन्हें एक्सपीरियंस था.
1: हाँ, तो मैंने बोला प्रैक्टिस करना है, और उन्होंने प्रैक्टिस करा दिया बर्थडे से. सही से पूछो, मैंने ये नहीं बोला था हीरोइन के साथ प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए. तो वो एक्सपीरियंस इज नॉट द सेम, बट इट वॉज फन, इट वॉज फन. आई वॉज ट्राइंग टू से, हाँ, पप्पू प्रसाद पांडे जो है, मैं कॉलेज लाइफ में ना जो थोड़ा केयरफ्री था एंड थोड़ा बिंदास था.
0: अरे, गांव की जो स्लो लाइफ होती है, उस स्लो लाइफ में रहने वाला इंसान, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, अपनी मस्ती में जी रहे हैं, वैसा है कुछ.
1: हाँ, वैसे ही है, वैसे ही. उन लोग, आई मीन उसमें डायलॉग है, चल भाई काम करने चलते हैं. हाँ चल, क्या काम,
0: अच्छा
1: चाय
0: अच्छा या वो देख लेंगे
1: पीने.
0: क्या करना है.
1: वो चलो तो सही,
0: जी.
1: देखो तो सही, चाय पियो तो
0: राइट.
1: सही,
0: काम भी निकल जाएगा,
1: हो जाएगा,
0: हो
1: देखेंगे
0: जाएगा चाय.
1: काम क्या करना.
0: अभी आपने कहा कि हीरोइन की जगह असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए साइकिल पर
1: हाँ
0: बैठने के लिए. अभी जब हीरोइन बैठे होंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अलग हो
1: हाँ
0: गया होगा सीन. मैं जानना चाहती हूँ एक एक्टर के लिए
1: हाँ
0: उसके जो को एक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है परफॉर्मेंस को अच्छा करने में, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में.
1: देखिए, ये जब मैंने एक्टिंग शुरुआत किया था ना, इवन बैरी जॉन में, मैं बहुत अच्छे मोनोलॉग्स देता था. ओके, एट द रिस्क ऑफ नॉट साउंडिंग वेरी हम्बल, आई वाज वंस टर्म किंग ऑफ मोनोलॉग्स.
0: ओके, ग्रेट.
1: या

0: கிவிங் அ மோனோலாக் இஸ் சம்திங் எல்ஸ், ஓனிங் அ ஸ்டேஜ், யூ பர்ஃபார்மிங், வோ தா. லேக்கின் ஜப் ஆப்கோ சீன் கர்னா ஹோதா ஹை நா, தோ எக் தூசரா இன்சான் பி ஹை
1: ஜி.
0: அப் யஹா ஆப் அப்னா மோனோலாக் நஹி தே சக்தே ஹோ, ஆப்கோ சமஜ்னா ஹோகா. தோ மே ஷுரூ மே ஜப் கர்தா தா, ஔர் அகர் தூசரா ஆக்டர் வீக் ஹை தோ முஜே ஏசா லக்தா தா கி மே ஹமாரா சீன் கராப் ஹோ கயா.
1: ஔர்
0: மே குத் மே சோச்தா தா யார் காஷ் யே அச்சா ஆக்டர் ஹோதா யா ஹோதி, அச்சா சீன் ஹோ ஜாதா.
1: லேகின் ஆஜ் ரீடேக் லே லே,
0: ரீடேக் அகர் வோ உன்னே உத்தனை இமோஷன் நீ தேனே நீ ஆதா யா வோ உத்தனை அச்சே ஆக்டர் ஹீ நீ ஹே தோ முஷ்கில் ஹோ ஜாயேகா.
1: தோ கம்யூனிகேஷன் கர்னா பதானா உன்கோ ஈஸி ஹோதா ஹை?
0: மே நீ பதாதா தா நா, மே க்யோ பதாவுங்கா, டைரக்டர் கா காம் ஹை. பட் பட் யே ஆக்டர்ஸ் கா, ஏக் ஆக்டர் தூஸ்ரே ஆக்டர் கோ யே நீ போல் சக்தா ஹை பாய், தோரா ஆக்டர்ஸ் கா ஈகோ ஹோதா ஹை.
1: ஓகே,
0: சோ தாரீஃப் கர் சக்தா ஹை, புராய் நீ.
1: அச்சா, கிரிட்டிசைஸ் நீ கர் சக்தா ஹை?
0: கிரிட்டிசைஸ் நீ, தே டேக் இட் பர்சனலி. சோ அப் ஏக் தூஸ்ரி பாத் சமஜ் மே ஆயி ஹை கி ஆக்டர் வீக் கோ யே நீ ஹோதா ஹை. தீக் ஹை, ஆப்கா பர்செப்ஷன் ஹை, ஹோ சக்தா ஹை வோ ஆக்டர் கம் இமோஷன் தே ரஹா ஹோ, ஹோ சக்தா வோ ஃபம்பல் கர் ரஹா ஹோ. வாட் இஃப் மேரா ஜோ பர்சன் சுன் ரஹா ஹை உஸ்கோ, வோ உஸ்கோ வேசே ஹி ரிசீவ் கரே ஜேசே வோ பர்சன் போல் ரஹா ஹை யா போல் ரஹி ஹை. அகர் ஆப் அப்னா ரிசெப்ஷன் சேஞ்ச் கர் தோகே நா, ஆப்கா ஆக்டிங் ஷாயத் உத்னா அச்சா நா லகே ஜித்னா ஆப் கர்னே வாலே தே
1: ஜி,
0: பர் உஸ்கா ஆக்டிங் அச்சா லக்னே லகேகா ஔர் உஸ்ஸே சீன் பெஹத்தர் ஹோ ஜாயேகா.
1: ரைட்,
0: ஔர் அகர் சீன் பெஹத்தர் ஹுவா, ப்ரோடக்ட் பெஹத்தர் ஹுவா, ஃபில்ம் பெஹத்தர் ஹுவா, தோ ஃபிர் ஆப்கா பி ஃபாயதா.
1: பில்குல்,
0: தோ அப் யே பாத் சமஜ் மே ஆயி ஹை கி ஹர் ஜகா ஆப் அப்னா பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நஹீ தே சக்தே.
1: யா, இட் டிபெண்ட்ஸ் அ லாட் ஆன் தி அதர் பர்சன் அஸ் வெல்.
0: ரைட் ரைட், சம்டைம்ஸ் டேக்கிங் அ பேக் சீட் ஃபார் த ஃபில்ம்
1: பிகாஸ்
0: ஐ கம் ஃப்ரம் அ தட் thought process ki main abhi bhi old school hu, karma hi dharma hai, matlab film mere liye bhagwan hai, that's it
1: ji,
0: I cannot compromise with it. So film ka fayda hoga, mere bhagwan ka fayda hoga, you know, to usse zyada acha kya hai.
1: तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता लाइफ कम्स अ फुल सर्कल? बचपन में दूरदर्शन देखना और आज पीबी वेव्स के साथ जुड़ना, हेलो हम बोल रहे हैं के जरिए. सो हाउ वाज एक्सपीरियंस लाइक जिस यू नो एक स्क्रीन पर आप सोचते थे कि आप भी जाएं एक्ट करें, शक्तिमान आपने बताया, चंद्रकांता आपने बताया, और आज पीबी वेव्स के साथ आप जुड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
0: एक्सपीरियंस मेरे लिए तो आई एम रियली थैंकफुल टू पीबी वेव्स. सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूरदर्शन प्रसार भारती डिजिटलाइज हो गया
1: जी.
0: सो पीबी वेव्स इज लाइक द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप ऑफ इंडिया, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. और मुझे पीबी वेव्स का ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे ना बहुत सारे रिलेटिव इंडिया के बाहर रहते हैं
1: जी,
0: तो बहुत सारे जो प्राइवेट ऐप्स है वो वहां पे नहीं खुलते हैं, कहीं खुलते हैं कहीं नहीं खुलते हैं
1: जी.
0: बट इफ यू नो पीबी वेव्स इज प्रेजेंट इन लाइक I think 137 countries or 138 countries.
1: Well, now it's digital, so you can access it anytime, anywhere.
0: No, but there are many apps, private apps.
1: Yeah.
0: You, India ke bahar accessible nahi.
1: Haan, exactly.
0: So all my, my bahut sare relatives and all, wo log complain karte rehte, but this, everyone is able to watch.
1: So views bad rahe hain fir.
0: Views bad rahe hain, and jaisa ki aapne bataya, main DD1 pe wait karta tha, ki aaj koi nahi movie lagane wala hai. Usme dikhata hai na ad, ki ye movie aane wala hai, kisi din koi nahi movie. नई मूवी मतलब बस एक ही दो साल पुरानी मूवी, दैट वाज न्यू मूवी.
1: सो मुझे लगता है कि आप काफी ब्लेस्ड हैं क्योंकि रेडियो पर गाने सुने तो आज आकाशवाणी में बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, दूरदर्शन पर मूवीज देखी और पीबी वेव्स पर खुद एक्ट भी किया. मैं एक चीज यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और हर तरह की सीरीज होती हैं, इस सीरीज में ऐसा क्या खास है, कोई इसे क्यों देखे, क्या यहाँ पर सबके लिए सब कुछ है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करके इसको बनाया गया है, मैं इसको क्यों देखूं, और क्योंकि वो भी तब जब भैया जी कौन है ये मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है.
0: देखिए ये मुझे तो आप इसलिए, मुझे लगता है आप इसलिए देखिए ना कि हर जगह बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं. आइए ना, चाय पी के गप हो रहा है.
1: इसकी बहुत जरूरत है, एक लग्जरी एक्चुअली है.
0: कुछ कोई बहुत चीजों का तो मतलब नहीं, अब इस सीन का क्या मतलब है भाई, ये 100 नंबर लाए हैं, कॉल करो, एक ना एक तो भाभी निकल जाएगी. और वो कॉल किए जा रहे हैं, कोई किसी को लग जाता है कॉल, वो एंड पप्पू प्रसाद पांडे, हेलो, हाँ कौन बोल रही है, जल्दी बताइए, जल्दी बात

0: जी हमको स्कूल निकलना
1: जी
0: है. ईच वन टर्न्स आउट टू बी अ स्कूल गोइंग गर्ल एंड दे आर लाइक शॉक एंड देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग कि अच्छा ये तो गुनाह हो
1: तो
0: गया.
1: कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए और यहाँ पर इस को शूट
0: जी
1: करते वक्त?
0: शूट करते वक्त फनी इंसिडेंट्स बहुत हुए. वन थिंग आई रिमेम्बर वॉज दैट साइकिल शॉट आई वॉज सेलिंग. हाँ तो वहां पे ना जब एडी को एंड ऑल प्रैक्टिस कराता था एवरीवन यूज्ड टू लाफ. गांव था.
1: ओह
0: कर
1: यस
0: क्या रहे हो, कर
1: जी
0: क्या रहे हो, बना क्या रहे हो हीरोइन की जगह इसको. ही वाज अ वेरी स्वीट एडी बट स्टिल. एंड देयर वाज अ थिंग सब मुझे बोलते थे हो हीरो हीरोइन को गिरा मत देना. साइकोलॉजिकल प्रेशर था गिरा मत
1: तो
0: देना.
1: आप कह सकते हैं आप हीरो बन गए हैं जो आप हीरो बनना चाहते थे।
0: हाँ सो हेलो हम बोल रहे हैं. आई फेल्ट लाइक अ बिट हीरो.
1: हीरो
0: वाई एम आई वॉज जस्ट एन एक्टर, अ गुड एक्टर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स,
1: जी।
0: अलग अलग अलग 10 कैरेक्टर. अच्छा
1: और अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, व्हाट्स नेक्स्ट?
0: दैट्स नॉट प्रभु प्रसाद. पप्पू प्रसाद पांडे का कोई
1: उस जोन से
0: अपकमिंग
1: बाहर
0: प्रोजेक्ट?
1: निकलना
0: पप्पू
1: पड़ेगा।
0: प्रसाद पांडे का भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है. लड़की को भगाओ लड़की और चाय पियो, वो पप्पू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो
1: अच्छा।
0: ज्यादा क्रिटिकल है. और मेरे भी एक दो है छोटे मोटे, नॉट एज इम्पोर्टेंट एज पप्पूज बट है छोटे मोटे. सो
1: जी
0: आई एम फाइनली डेब्यूटिंग इन अ फिल्म एज अ लीड एंड उसका
1: कंग्रेचुलेशंस।
0: फाइनल शेड्यूल अभी आई थिंक अक्टूबर में होना चाहिए.
1: जी
0: आई हैवन्ट गॉट द डेट्स बट दैट वुड बी माई डेब्यू
1: वाओ,
0: अगेन.
1: दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, एक और बात की जाती है इंडस्ट्री में, आउट ऑफ साइट मींस आउट ऑफ माइंड।
0: राइट.
1: कहीं ब्रेक ले लिया, थोड़े दिन नजर नहीं आए तो इंडस्ट्री भूल जाती है आपको। सो फेम चाहिए या सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक एक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस कुछ भी करते रहो, बने रहो, साइट में रहो, नजरों में रहो, या थोड़ा सस्टेनेबल हमें रहना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो पिक एंड चूज करने की लिबर्टी होती है।
0: नहीं, सस्टेनेबिलिटी अगर आपको करना है तो थोड़ा फेम तो चाहिए. फेम के बिना आप सस्टेन कैसे करोगे? लाइक यू नीड, क्योंकि फेम के साथ मॉनेटरी सक्सेस भी आएगा तभी. आई मीन सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको आपको पता है पीआर मार्केटिंग ये सब पे खर्च करना होता है बिकॉज दैट्स हाउ एन एक्टर स्टेज इन लाइम लाइम. तो नहीं तो वो नहीं तो फिर पापा को कॉल करो.
1: पापा को कॉल करो से याद आया कि अब पापा क्या सोचते हैं, पापा का विजन अब कैसा है आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेकर? उस टाइम तो आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा होगा। किसी भी पेरेंट के लिए होता है कि जॉब छोड़ दी, स्टेबल जॉब छोड़ दी, कहाँ जा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाने जिसका भरोसा नहीं है। सो अभी वापस जा सकते हैं? अभी लाइक हाउ डू दे सेलिब्रेट योर सक्सेस?
0: सी अगेन इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ओवर देयर दे आर नेवर गोइंग टू टेल मी माई डैड इज नॉट गोइंग टू बहुत अच्छा एक्टर है ये है बट आई गॉट टू हियर इट फ्रॉम समवेयर. ही वॉज टेलिंग समवन हो सुनो हीरो के पापा हैं.
1: अरे वाह। सो आपको कैसा लगता है अब जब लोग आपको, आपके फादर को कह रहे हैं हीरो के पापा हैं, आपको हीरो कह रहे हैं, आपकी इस जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आर यू हैप्पी नाउ? आपको लगता है कि हाँ वो मोमेंट आ गया जब ये सेलिब्रेशन लॉन्ग ड्यू था, बनता था, यू आर कंटेंट नाउ?
0: मैंने सोचा था मैं उतना खुश रहूंगा पर मैं अभी हैप्पी नहीं हूं. मैं आगे का सोच रहा हूं. मेरे पास वक्त नहीं है अभी हैप्पी रहने का. सो समटाइम्स व्हाट यू वेट फॉर थ्रू आउट योर लाइफ जब आ जाता है ना तो शायद आपके पास वो वक्त नहीं होता है सेलिब्रेट करने का.
1: और कभी ऐसा नहीं लगता कि चलो आज तो सब पहचान रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर क्यों नहीं विश्वास किया जब मैं बहुत डिटर्मिंड था कि मैं कर सकता हूं, उस वक्त क्यों नहीं सपोर्ट किया? कहीं ना कहीं वो मन में रहता है, कसक सी रहती है मन में।
0: यू नो दैट्स द वर्स्ट पार्ट. दैट्स द वर्स्ट पार्ट. आई होप समडे इट हैपेंस दैट पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द जर्नी. मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल.
1: राइट।
0: काश वो उस समय आए होते जब मैं डिप्रेशन में था मैं फाइट किया तब. काश आए होते कॉन्ग्रेट्स यू वॉन योर फाइट अगेंस्ट दैट डिप्रेशन. कॉन्ग्रेट्स यू टुक अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर जर्नी.
1: राइट।
0: काश ये मैसेजेस आए होते. ये मैसेजेस भी अच्छे हैं. आई एम फीलिंग गुड. पर काश उस समय भी आए होते.
1: तो अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते हैं तो अच्छा लगता है, और जब कोई क्रिटिसाइज करता है तब कैसा लगता है?
0: वो गलत है. गलत है, उसको पता नहीं
1: अच्छा, उसको
0: है।
1: पता नहीं है यहाँ पे सब ठीक है, उसको पता
0: ठीक
1: नहीं
0: है,
1: है।
0: क्यों यार, जाओ
1: ओके
0: थोड़ा स्टडी करके आओ।
1: ग्रेट, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है ऐसे
0: हाँ
1: अपने आप को खुश रखने के लिए।

0: And that's very important also. How do you see yourself evolving as an actor, let's say, ज़्यादा लंबा टाइम ही लेते, 3 years down the line,
1: क्या 3 years डाउन द लाइन तक तो आई डोंट
0: फोर्टीन
1: नो.
0: ईयर्स की ऑलरेडी जर्नी हो चुकी है.
1: हाँ 3 years डाउन द लाइन.
0: चलिए 5 years कर देते हैं.
1: हाँ 5 years. सी आई टेल यू वन थिंग, एज एन एक्टर मैं रोज ग्रो करने वाला हूँ क्योंकि मैं रोज नया एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ. बट इफ यू मीन द सक्सेस एस्पेक्ट ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन इट. अगर मैं वर्ड्स में पुट करूँ, वर्ड्स लिमिटेड है, इट्स गोइंग टू बी डिफाइन. फॉर मी इट्स अ फीलिंग. तो मुझे पता है, मुझे फील होता है, लेकिन उसको मैं वर्ड्स में पुट करके छोटा नहीं करना चाहता हूँ. सो फॉर मी इट्स दैट दैट इज द सक्सेस विच इज अनडिफाइंड, विच इज मेड ऑफ यू नो नॉट जस्ट अचीवमेंट्स, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फेलियर्स, जर्नी. एंड फेलियर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि वही यूनिक है, वो डिफरेंट है आपके फेलियर से. सक्सेस का जनरली लोग एक मापदंड दिए हुए हैं कि
0: जी,
1: ये है सक्सेस. फेलियर्स का कोई मापदंड नहीं है, सबके अलग अलग फेलियर है.
0: तो चलिए आज आप एक एक्टर हैं, सक्सेसफुल हैं और आगे सक्सेस मिलेगी. हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं. अगर अगर एक्टर नहीं बन पाते इतनी यू नो
1: हाँ
0: स्ट्रगल के बाद भी, तो क्या वापस इंजीनियरिंग की जॉब पकड़ लेते, क्रिकेटर
1: क्रिकेटर बन जाता, क्रिकेटर
0: बन जाते?
1: बन जाता. हाँ थोड़ा लेट हो गया हूँ, मे बी फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता, स्पिन कराना पड़ता,
0: राइट.
1: तो वो बन जाता.
0: चलिए, यानी आपने एक बैकअप प्लान रखा हुआ था.
1: हाँ, क्रिकेटर तो मैं मेरा पहला ऑप्शन था, फिर
0: ओके,
1: मुझे पता चला मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, तो
0: तो एक्टिंग
1: फिर
0: कर लेते हैं.
1: एक्टिंग कर लेते. लाइक एनी इंडियन किड, क्रिकेट एंड फिल्म.
0: सो हमारी कंट्री में क्रिकेट और फिल्म्स बहुत पॉपुलर है, सबकी पहली पसंद यही रहती है. लेकिन सबकी पहली पसंद उनकी पहली जॉब बन जाए जरूरी नहीं है. बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, मुंबई आते हैं या मैं कहूंगी कि दिल्ली में भी आते हैं, यू नो, कि हम एक्टिंग करेंगे, हम थिएटर ज्वाइन करेंगे और कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते. तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे, आपकी जर्नी से वो क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या टेक अवेज रहने चाहिए जो आपने खुद महसूस किया?
1: देखिए मेरे जर्नी से एक्चुअली मुझे पता है कोई नहीं सीखने वाला है, कोई दूसरे के जर्नी से सीखता नहीं है. मैं बहुत चीज़ें बोल दूंगा बट कोई कोई दूसरे के जर्नी से एक्चुअली सीखता नहीं है, गलतियाँ करना ज़रूरी है. मैं बस यही बताना चाहूँगा कि प्रॉपर एनालिसिस कर लो. अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, और आप वो छोड़ के यहाँ आने का कर रहे हो, आप कॉलम बनाओ, आप पेपर पेन लो, लिखो, स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, फिर दो कॉलम बनाओ कि दिस इज द मैक्सिमम आई कैन अचीव, ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम आई कैन लूज. आप अब बिलीव करो कि वो मैक्सिमम आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर लियो, और बिलीव करो जो मैक्सिमम लूज करना चाहते हो वो भी कर लियो. अब यहां से सोचो ये अचीव करके कि जो आप लूज करना चाहते हो वो कर लिए हो, क्या अब आपको ये अचीवमेंट वर्थ इट लग रहा है? अगर आपको वही वर्थ इट नहीं लग रहा है तो इसमें घुस क्यों रहे हो? प्लानिंग तो बाद की बात है, लोग ये सब करने के बाद फिर देखते हैं अरे क्यों कर लिया यार, पर टाइम निकल
0: और
1: गया ना.
0: सबके सपने भी होते हैं ना कि हमें बहुत जल्दी बड़ा ब्रेक मिल जाएगा. आपने भी सोचा था, प्रोड्यूसर्स
1: हाँ
0: खड़े हैं बाहर लाइन लगा के.
1: बताया, उनकी गलती मेरी गलती
0: हाँ,
1: नहीं.
0: आपके केस में तो उन्हीं से गलती हो गई, लेकिन अब कोई सोचे कि सीधा सिल्वर स्क्रीन पर ही आना है, तो आप क्या कहेंगे कि एक्टर को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आज तक है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, थिएटर है, ओटीटी है, फिल्म है, सीरियल्स हैं, सो कहाँ से शुरुआत करे एक एक्टर? एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं, लाइक यू नेम इट एंड दे हैव इट.
1: अब तो बहुत चीजें बहुत आसान हो गई है. अब तो कास्टिंग कॉल्स ना आप घर बैठे भी भेज सकते हो, आप अपने घर पे ही बना के
0: जी,
1: भेज सकते हो, तो अब चीजें बहुत आसान हो गई है
0: राइट.
1: ये बनना. बट आपको एक्टिंग की शुरुआत करनी है ना, तो पहले खुद में करो, पहले
0: घर पर एक्टिंग करो. अच्छा,
1: घर पे एक्टिंग करो, और अगर मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है तो बाथरूम में के अंदर बंद करके आईना के सामने,
0: ओके, तो
1: ठीक है,
0: यहां से शुरुआत कर
1: यहां
0: देनी
1: से
0: चाहिए
1: शुरुआत कीजिए.
0: और फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करें कि
1: हाँ
0: थिएटर करना है
1: थिएटर
0: या.
1: उठरी बात की बात है, पहले
0: अच्छा,
1: आईने के सामने अच्छा एक्टिंग कर पा रहे हो या नहीं.
0: और अच्छी एक्टिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अभी से डेवलप कर सकते हैं? आपकी लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है, आपके एक्सप्रेशंस पे वर्क करना है. कहीं कहते हैं कि डांस सीखना बहुत जरूरी है, उसके आपकी बॉडी लैंग्वेज पर से बहुत एक अच्छा असर पड़ता है, आपके पॉस्चर पे आप एक ग्रेस आती है. सो कुछ ऐसा है जो साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब अपना होमवर्क कर ही आते हैं.
1: हाँ मैं तो अभी कर रहा हूँ.

0: अभी डांस सीख रहा हूँ,
1: ओके कौन सी
0: लाइक
1: डांस फॉर्म सीख रहे हैं आप? बॉलीवुड?
0: बॉलीवुड,
1: ओके
0: बॉलीवुड। सी मैं डांस जो करता हूँ ना, तो मैं एक्सप्रेशन तो दे देता था,
1: राइट
0: पर मेरा बॉडी वैसे नहीं मूव कर रहा था। सो अब सोच रहा हूँ उसे भी थोड़ा बेटर कर लूँ। सो आई एम लर्निंग बॉलीवुड, लर्न अ बिट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी, थोड़ा बहुत सब कुछ सीख रहा हूँ डांस को।
1: वेल दैट्स वेरी नाइस, और एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई आपके साथ। आपकी जर्नी के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, और सच में ये फील हो रहा है कि सपने देखने चाहिए सच हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, मिरेकल्स डू हैपन। आपकी जिंदगी में भी हुए होंगे राइट?
0: या मिरेकल्स डू हैपन, मैजिक डज हैपन,
1: या
0: इट्स यू बिलीव इन इट, इट्स योर बिलीफ इन इट विच मेक्स इट हैपन। जस्ट ये ध्यान रखना होगा कि वो होगा नहीं, आपका बिलीफ उस पे उसको होने होने पे मजबूर करेगा।
1: बिल्कुल, पेट दर्द है नहीं, लेकिन
0: हाँ
1: अगर आपने सोच लिया कि
0: सोच लिया,
1: पेट दर्द हो रहा है तो
0: हाँ
1: पेट दर्द हो जाएगा।
0: हाँ इतना सोच लो कि आप दवा भी खा सकते हो और दवा खाने से वो ठीक
1: वो
0: हो
1: ठीक हो
0: जाएगा।
1: जाएगा। वेल
0: हाँ
1: दैट्स अमेजिंग। आई एम श्योर कि ये जिस तरीके से आपने एक्टिंग सीखी और भी लोग सीखे, और अपने ऑफ कोर्स अपने आपने बोला क्योंकि अपने एलिमेंट्स आएंगे
0: हाँ
1: तो वो अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे।
0: राइट,
1: आपकी इस जर्नी के लिए आपको डेफिनेटली बधाई देना चाहती हूँ, और
0: थैंक
1: आप
0: यू,
1: यहाँ आए, आपने टाइम दिया और इतने कैंडिड तरीके से अपनी बातें शेयर करी। थैंक यू सो मच, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, स्पेशली पप्पू प्रसाद पांडे जी।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू टू एवरीवन वॉचिंग, थैंक यू टू पीवी वेव्स, थैंक यू टू आकाशवाणी, एंड इट हैज बीन अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर बीइंग हियर।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। ये पॉडकास्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 01

0: अच्छी प्रिया।
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें। श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े विषयों पर गहरी समझ रखने वाले पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: जी नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जाने सुर्खियां।
0: Benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.3% फिसले। अमरीकी शेयर बाजारों में इस सप्ताह बढ़त हुई और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं, बिना विलंब किए जानते हैं कि सप्ताह के दौरान हमारे दोनों ही यानी कि प्रमुख शेयर सूचकांक यानी कि बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 0.3% उड़ के। सेंसेक्स फिसल कर 77,265 पर आया, वहीं निफ्टी लुढ़क कर 24,176 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में सप्ताह के दौरान 0.5% से अधिक की वृद्धि हुई। क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो निफ्टी मेटल, आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर सूचकांकों में 2% से अधिक की तेजी आई। वहीं दूसरी ओर निफ्टी एफएमसीजी में लगभग 1.5% और निफ्टी ऑयल एंड गैस, ऑटो तथा डिफेंस सूचकांकों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 32 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.39 रुपए पर बंद हुआ।
0: We would like to know, Shishir, from you. We have had for three consecutive weeks, due to persistent geopolitical uncertainty, the investors' sentiment was quite low. Now we are talking about the fourth week, so to speak, and the uncertainty remains. So should we continue to have volatility in the market, or do you think there could be some silver lining somewhere?
2: So we should not just think about the uncertainty, geopolitical uncertainty. We should also focus on what was told during the Jackson Hole meeting. If you go by what the Federal Chief Reserve said during that meeting, he said that we have to think about bringing the inflation to 2% level, and whatsoever we have to do, we will do it. That means, what is the indication? The indication is that there could be an interest rate hike in the month of September. So if it happens, that's not a good news for the market. So geopolitical combined by any action by the Federal Reserve, that will have some action, that will have some impact on the market. So geopolitical, we all know, I mean we do not getting any sense that when this is going to end. And if you get one voice from US, then another voice from Iran, then another voice from some other country, so there is a continuous thing. So I do not know what will happen, but I believe that now the Jackson Hole commentary by the Fed chief is really, really important. And if he is going to hike the interest rate in the month of September, then that will not be a very
0: but
2: good
0: thing. That's another factor that will come into consideration, Shishir. Geopolitical situation is one, and the Jackson Hole is the other one. You cannot say that that's geopolitical is something that we cannot.
2: I'm saying that it is important. What I'm saying that apart from the geopolitical, now the another concern for the market is the if any rate hike by Federal Reserve in the month of September, that means

0: could be more FPI outflow, because when you the interest rate is high, people are going for the profitable venture. So I'm not discounting the geopolitical factor, but I'm also adding one more factor which is bringing some kind of nervousness among the market participants.
1: And also on the sectoral front, Nifty, metal, IT, pharma, healthcare did pretty well. So which are the sectors that you would recommend that we should keep our eye on?
0: After this NVIDIA latest result and their commentary on the result, now we are seeing a good recovery in the IT sector. I mean, if you can remember last month we were talking about that how IT sector is going to be affected. Now because NVIDIA is saying that infrastructure investment will be continue to be more, and that is good news for the IT sector. So my first priority would be IT sector because it's slightly on the valuation side. The second will be of course the PSU banks. I think the PSU banks are very undervalued. There should be more and more opportunity there. And the third one, all-time hit, फार्मास्यूटिकल सेक्टर.
2: आपसे और भी बातें करेंगे और भी सवाल पूछेंगे हम, मगर उससे पहले आइए पहला सवाल लेते हैं कोलकाता से. अनिमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अनिमेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र.
2: गुड इवनिंग,
3: दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता.
2: बहुत स्वागत है आपका.
3: आई हैव वन क्वेश्चन.
1: प्लीज गो अहेड.
3: वुड इट बी सेफ टू इन्वेस्ट ए ह्यूज अमाउंट in the market of smartphone? Thank you, sir.
2: Smartphones को लेकर के वो पूछ रहे हैं कि क्या ये वाजिब होगा अभी यहाँ पर निवेश करना?
0: देखिए, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां जो हैं, जो गिनती की कंपनियां हैं जो कि शेयर बाजार में हैं, और अभी एक चर्चा ये चल रही है कि जो 25,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन है उस पर जीएसटी की दर 18% से घटा करके 5% कर दिया जाए. तो इस समय में जो मोबाइल हैंडसेट का मार्केट है उसमें थोड़ी हमने गिरावट देखी है. करीबन मतलब बीते कुछ समय में बहुत तेजी थी, लेकिन अभी कुछ समय से गिरावट आ रही है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं. और कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले जो एक खास कलपुर्जा होता है वो उसकी कमी दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है. तो अब 12 सितंबर को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है और अगर मोबाइल हैंडसेट में दरें कम की जाती हैं जीएसटी की, तो वो उन कंपनियों के लिए बेहतर होगा. तो मुझे लगता है कि 2 सप्ताह इंतजार कर लें, उसके बाद अगर उसमें आप जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा.
2: ये तो रही मोबाइल की बात, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ईवी पर, तो ईवी पर आपकी क्या राय रहेगी?
0: देखिए, ईवी को लेकर के थोड़ा सा बुलिश मैं इसलिए हूँ क्योंकि कई तरह के प्रोत्साहन की बात चल रही है, कई तरह की योजनाओं की बात चल रही है. यहाँ तक कि अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ, उन्होंने भी प्रोत्साहन योजनाएं की बात की है. तो ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं या जो भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं उनके लिए स्थिति बेहतर तो नज़र आ रही है. लेकिन एक चीज़ अभी ध्यान में रखना है कि जो हमने कहा कि चिप की बात है और कीमतों को लेकर के आने का सिलसिला चल रहा है, और अभी भी हमारे यहाँ ईवी में एक कंसर्न आता है इंफ्रास्ट्रक्चर
2: की बात.
0: तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा उसको पीछे खींचती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और खास तौर पे जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है.
2: और ईवी का विजन खाली यही तो नहीं है ना कि हम अभी वो बुलिश हो रहा है या वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम एक ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं अगर.
0: बिल्कुल.
2: तो ईवी बहुत किफायती भी है हाउसहोल्ड के लिए.
0: नहीं, कीमत के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो ईवी आपको एक सामान्य जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है उससे थोड़ा महंगा होता है
2: शुरुआत में.
0: हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसकी जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की. आप गाड़ी तो ले आते हैं, चार्जिंग कहाँ कराएंगे?
2: जी, जी, जी.
0: और खासतौर पर अगर मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करूँ, वहां पर एक समस्या है अभी भी. तो एक कॉशस है, लेकिन चूंकि ये ईवी बनाने वाली जो कई कंपनियां हैं वो फॉसिल फ्यूल भी बनाती हैं और जहां पर हम अच्छी खासी बिक्री देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो स्थिति अच्छी है. वो
2: दिल्ली से हमारे साथ वत्स राज जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्कार.
2: नमस्कार
4: मार्केट मंत्रा. नमस्कार सुशील सिन्हा जी. सर, मेरा सवाल है कि क्या एक कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है? और अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है तो जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो क्या उसको उसके पैसे कुछ वापस मिलते हैं जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उस समय की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? प्लीज, थैंक यू.
0: देखिए, कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर

0: सकते हैं, एक जिनको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहते हैं, जिनको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनकी स्थिति कह सकते हैं कि जब कंपनी अगर मान लीजिए कि बंद हो गई, कंपनी का सारा कुछ बिकने की स्थिति में आ गया, तो पहला वहाँ पर हक क्रेडिटर का बनता है। तो जो आपका मूल सवाल था कि क्या वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है या सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कैटेगरी में आएगा। पहली बात, उसको हम क्रेडिटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने कर्ज नहीं दिया है, उसने शेयर खरीदे हैं, तो वो क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आता है। वो उसको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी पहले कर्जदारों ने जिससे पैसे लिए उसको चुका दिया, सरकार का जो बकाया है उसको चुका दिया, कर्मचारियों का बकाया है उसको चुका दिया, उसके बाद अगर पैसा बचा तो जो फेस वैल्यू है उस शेयर का, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके मान लीजिए 1, 2, 5, 10 जो भी फेस वैल्यू, उतने ही पैसे उसको मिलेंगे। अब दूसरा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है वो एक तरीके से उसका इंटरेस्ट पे भी हक बनता है, और जब कभी भी कंपनी बंद हो जाए या कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो उसका हक जो है वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में आगे रहता है, उनको सबसे पहले भुगतान किया जाता है।
1: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: जी सभी को, मैं दिल्ली से अमित झा बात कर रहा हूँ सर।
0: जी अमित जी बोलिए।
2: सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि हमने, बड़ी अच्छी बात है कि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए सर, परंतु सर पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो सर हमारी जीडीपी की रफ्तार वही है, उतनी ही रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा भी कोई खास उत्साहजनक है नहीं सर। तीसरी चीज सर, ग्रोस सॉरी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता घाटा है, अगर हम निर्यात बढ़ता है हमारा निर्यात, हमें खुशी मिलती है तो साथ में आयात भी बढ़ जाता है, तो ट्रेड बैलेंस वहीं पे रह जाता है जस के तस है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस गति से अगर हम वृद्धि कर रहे हैं जीडीपी और आईआईपी में, तो क्या चमत्कारी कोई होने वाला है कि 2047 में हम एकदम से विश्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ जाए, हमारी कोई जादू की छड़ी है इस हिसाब से रफ्तार से, तो मुझे लग नहीं रहा कि सर हम।
0: अमित जी, आपकी आशंकाएं गलत नहीं है कि इस तरह के विकास की रफ्तार से क्या हम 2047 में 30 अरब डॉलर, माफ कीजिएगा, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हम बन सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से विकास हमारी रही है कि देखिए 6% के ऊपर या 6.5% के ऊपर, फिर से अगर आप 6.5% की दर से विकास करते हैं तो वो एक संतोषजनक स्थिति है। ये ध्यान ज़रूर रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही प्रतिकूल हैं, और उनके बावजूद भी अगर हम 7% या उससे ऊपर की दर से विकास करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। अब रहा सवाल कि क्या इसी रफ्तार से हम 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन पाएंगे, मेरा जवाब होगा नहीं। यहाँ पर आपको विकास की रफ्तार ऊंची चाहिए, आपको 8% या 8% के ऊपर चाहिए, 9% का चाहिए, लेकिन वो केवल आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई कहे कि केवल और केवल सरकार ही सब कुछ करेगा, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो अगर आपके हिसाब से नहीं है, कच्चे तेल के भाव काफ़ी ऊपर चल रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आशंकाओं से सहमति रखता हूँ। मैं
3: जॉइनिंग अस फ्रॉम बेंगलुरु इज एन आर प्रसाद, अ वार्म वेलकम।
4: Hi, good evening, Market Tantra. This is Anar Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji.
3: Hello, hello, how are you?
4: Mr. Sinha, just one question. What is exactly this CAS starting from the SEBI closing action session and from 3:15 to 3:30 p.m.? And in that first 5 minutes is called IEP. Really, I don't know how it works. My broker is starting this new session from Monday onwards. Can you just detail on this, what exactly how it works? Thank you. This is my question.
0: Mr. Prasad, I may not be able to give you much detail about the CAS, but I can tell you that CAS is basically all talking about the price discovery during the last 15 minutes of the session, trading session, which is between 3:15 and 3:30. And that is based on the future, and that's basically on the derivative trading. So that is one thing. There are a lot of, differences are there. There are a lot of issues are there because this is a new system. So of course, there will be some teething problem and what we have seen during last 15 days. But when we were talking to SEBI chairperson, he made it very clear that we are not going to make much change into that. But of course, I mean,

0: all the views and all the suggestions are most welcome. So if I just summarize it into just one sentence, it is a new mechanism for the price discovery. There are some issues because the brokers are not very much aware about this new system. So there are some problems like what happened on Friday also. But trust me that within 15 days or within a month or so, we believe that this system will stabilize and there will be a proper price discovery, which is going to benefit the market.
1: दिल्ली से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: जी नमस्कार डॉक्टर जी को. मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि मार्केट में, शेयर मार्केट में खासतौर पे, कि जो लार्ज कैप है उनका ग्रोथ रेट स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा कम रहता है, और आने वाले 10 साल या 15 साल या 12 साल पीरियड में स्मॉल कैप और मिड कैप लार्ज कैप को बीट कर देते हैं. तो एक डिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है कि वो लार्ज कैप में एलोकेशन ले, यानी कि क्यों ना वो अपना 50% ज्यादा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में ले, अगर उसने निश्चित कर ही लिया है कि उसको 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है.
0: योगेश जी, यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप खरगोश की रफ्तार से रखना चाहते हैं या कछुए की रफ्तार से चलना चाहते हैं. बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव अगर आए वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है. स्मॉल कैप और मीडियम कैप के साथ, मिड कैप के साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम तेज़ी से उतार चढ़ाव देखते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि उसमें जो फ़ायदा हो रहा है या उसकी जो कीमतों में अंतर है वो लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है. ध्यान रखिए कि लार्ज कैप के रास्ते में बैरिक जो कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर्स, उस तरीके के नहीं होते हैं जैसे आपको स्पीड ब्रेकर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है. तो मिड कैप और स्मॉल कैप गलत नहीं है, अगर गलत होते तो बाजार में उसकी अनुमति ही नहीं होती. बाजार में वो है यानी कि वो सही है. लेकिन एक निवेशक के लिहाज से, और एक कहते ना कि आप एक लंबे समय के लिए आप बने रहना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए ये एक बेहतर होता है कि आप लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में कम रखते हैं.
3: जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ. अ वार्म वेलकम जितेंद्र.
4: जितेंद्र जयपुर से, नॉट दिल्ली. ठीक है. हेलो
0: जी, जयपुर से ही हैं आप जितेंद्र जी, बताएं.
4: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. अच्छा सर, ये पिछले बार आपने बहुत अच्छा बताया कि टुकड़े टुकड़े में प्रॉफिट भी बुक करिए और इंस्टॉलमेंट पे परचेज भी करिए, बहुत अच्छा लगा. और आपने हिंट भी दे दिया था लार्ज कैप फंड का. ठीक है, तो आप हमसे सर बस ये दो चीज बताइए कि सर जैसे अभी कौन सा सेक्टर मतलब थोड़ा सा भी सस्ता है हम लॉन्ग टर्म के लिए ले. ऐसे तो मैंने आईटी में शुरू कर दिया है, आईटी में. इसके अलावा
0: तो आपका ये पहला प्रश्न है, आपने कहा दो प्रश्न पूछने हैं.
4: नहीं,
0: अच्छा एक ही प्रश्न है. अच्छा अच्छा जितेंद्र जी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया है कि आईटी में आपने शुरू किया है, क्योंकि मेरी अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो राय रही है कि आईटी सेक्टर एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन रही हैं, तो उसमें आप किस्तों में आप निवेश करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है. दूसरा, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है कि इस समय में आकर्षक हैं, और तीसरा फार्मा भी है, और इसके साथ साथ अगर डिफेंस में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई हैं. और अभी आपको बताएं, कुछ दिन पहले DRDO की तकनीक, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है कि इस समय में आकर्षक हैं, और तीसरा फार्मा भी है, और इसके साथ साथ अगर डिफेंस में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई हैं. और अभी आपको बताएं, कुछ दिन पहले DRDO की तकनीक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही गई थी, यानी कि वहां पर भी डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के लिए एक अच्छे दिन है. तो आप ये चार सेक्टर्स को ध्यान में रख करके

0: निदान नहीं हुआ है, तो एनसीलैट में जा सकते हैं जो एपिलेट है, वहाँ से भी अगर उनको संतोषजनक उनकी जो निर्णय है वो नहीं है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है, जो इस मामले में हम देख रहे हैं। आप अब आपका जो प्रश्न है रत्नाकर जी, आपने FMCG की बात करी, आपने डिफेंस की बात की,
1: फार्मा
0: और फार्मा की बात की, दो जो बात के हैं डिफेंस और फार्मा, मैंने अभी दो श्रोताओं के प्रश्न के जवाब में खास तौर पर उसका जिक्र किया था कि आप फार्मा में और डिफेंस में जा सकते हैं। इसके अलावा IT सेक्टर हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिति थोड़ी अच्छी मुझे लग रही है, तो ये चार क्षेत्र हैं जहाँ पर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।
2: Prime Minister Narendra Modi has arrived in Tashkent, Uzbekistan today on a two-day visit. The business between both the countries has increased manifold in recent years, and the visit of PM Modi is expected to further increase the business opportunity. We have a report from a correspondent.
3: India is among top 10 partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion. Both countries want to double this figure in the next 3 years. Talking to Akashvani News, Alisher Shaikhov, advisor to the chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, said that both countries have the potential to double their business in the coming years.
4: With India, of course, the first is the pharmaceutical, healthcare, tourism, and the medical tourism especially, and also IT, AI, and digital transformation. Because all the countries now are just moving to the digital transformation, and that's the where is we easily can find a lot of the potential to realize and just to get a huge profit just providing services not only to Uzbekistan, Central Asia, CIS countries, but also to Europe, and also it can be Japan, South Korea, this where is the aging society is giving potential for us just to be present there.
3: Speaking to Akashvani News, Smita Pant, the ambassador of India in Uzbekistan, said that both countries will also discuss of connectivity issues.
5: Despite connectivity bottlenecks, India or Uzbekistan natural markets hain. Hum zyada niryat kar sakte hain. Hum equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, isko hum export kar sakte hain. Hum unse zyada import bhi kar sakte hain. Because ye resource rich nation hai. Stumbling block jo hai, wo hai connectivity. To isko leke dono leaders baat karenge, dekhenge ki kya kiya ja sakta hai.
3: For Market Mantra, this is Sushil Chandra Tiwari from Tashkent, Uzbekistan.
6: केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये किस तरीके से हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं शिशिर जी?
0: अभी आपने एक प्रश्न आया था कि हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें विकास की स्थिति क्या रहेगी। आप देखिए, एक मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल जी दोनों ही बाहर से ज्यादा निवेश लाने में जुटे हुए हैं, ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।
6: शिशिर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब।
0: And
2: before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
7: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
8: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
9: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.
10: நேரம் 11:40. ஆகாஷவாணி 100.1 FM கோல்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதில் இனி கேட்கலாம் திரைக்கானம். தூரத்து இடிமுழக்கம் திரைப்படத்திலிருந்து பாடல் ஒலிக்கிறது. பாடலை பாடியிருப்பவர்கள் KJ

0: கீட் அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது திரைக்கானம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और

0: रोशनी से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव में भारत की मदद जारी है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल हाइड्रो पावर सुरंग का मौके पर जायजा लिया। डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और इंजीनियरों वाली यह टीम शुक्रवार को काठमांडू पहुंची थी। कल वे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के काम में मदद के लिए नोवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चिली में और लांगटांग इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद भारतीय टीम ने सुरंग के आसपास बचाव से जुड़ा जरूरी काम शुरू कर दिया। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों वाले 82 सदस्यों की एक संयुक्त रक्षा टीम कल से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे माने जा रहे लोगों तक पहुंचने के काम में जुटी है। नेपाल की सेना के अनुसार नेपाली सुरक्षा बलों ने अब तक देश के विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 कर्मचारियों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और लोगों के फंसे होने की खबरों के बाद नेपाली अधिकारियों ने भारत से मदद मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार बताए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Neena Arakil. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, last evening on a 2-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit

0: கீட் அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இரவின் மடியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விகாஸ் மெஹ்ரோத்ரா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे. राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया. हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं.
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है. हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे. दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे. वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान.
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं. प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है. बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक से निहित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमथिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। पंपा नदी में होने वाली इस वार्षिक नौका दौड़ में 51 स्नेक बोट हिस्सा लेंगी। साथ ही तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे जहां वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केरलम लौटने पर वे कोची के ककनाड में राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की रजत जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, last evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek resident Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked out with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country. The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, the External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. As per local government source, 598 Indian nationals crossed into Nepal from China in the last 2 days. Meanwhile, 900 Indian nationals who are yet to depart from China are safe and an Indian embassy in Beijing is in touch with them directly or through the local government. The ministry added that the government of India has been working in close coordination with the Nepali and Chinese authorities for the early rescue and relief efforts of those affected by the floods. A round-the-clock control room has been established in the Ministry of External Affairs and the Indian embassies in Kathmandu and Beijing have 24/7 helplines operational. It said both embassies have also remained engaged with all the relevant stakeholders to ensure effective coordination of search, rescue and relief efforts. In the meantime, external affairs

0: மாடி மேலே மாடி கட்டி கோடி கோடி சேர்த்து விட்ட சீமானே. ஹலோ ஹலோ கமான் கமான் சீமானே. ஆளு அம்பு சேனை வச்சு காரு வச்சு போர் அடிக்கும் கோமானே. ஹலோ ஹலோ கமான் கமான் கோமானே.
1: 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் பணக்கார குடும்பம், சர்வர் சுந்தரம், காதலிக்க நேரமில்லை திரைப்படத்திலிருந்து பாடல்களை கேட்டு ரசித்தீர்கள். நிறைவு பெற்றது நினைவில் நின்றவை. சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे. राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया. हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे.
3: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है. हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे. दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे. वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान.
2: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं. प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है. बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिससे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था. मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं. स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए. इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है. मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे, जहां भी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இனி செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விகாஸ் மெஹ்ரோத்ரா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे. राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया. हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे.
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है. हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे. दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे. वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान.
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं. प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है. बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिससे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था. मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता है. स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए. इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास या उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का आधार भी है. अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है. उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे. यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा. यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप

आप सुन रहे हैं श्री प्रभाकर धाकड़े का वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर पंडित रघुनाथ नाकोड साथ दे रहे हैं। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग शुद्ध सारंग।